0: कायर बुझ दिल ने उन्हां दियां छातियां धड़कदियां ने मन डोलदे हन
1: तोप रह कले छुट है जंजैल
0: पर सारे प्रकार दियां जेड़ियां तोपां ने वड्डियां छोटियां मध्यम दर्जे दियां बादशाह अकबर ने

मन शब्द छलीन हो गया, जुड़ गया। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान जुड़ गया। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण है, ज्योत दे ज्योत हो गए। जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई, होंदी एक छिन विच है। निर्माण कीर्तन गावो कर देखा निमक, सिमरत जित छूटे निमक। निमक एक सेकंड है, एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन एक निमक, इन अतकथने न समझ लेना। किसे कमरे विच पचास साल का अंधेरा हो, गुप अंधेरा हो, उस अंधेरे नू कढ़न वास्ते पचास साल लगन गए? नहीं, एक सैकंड लगेगा, बत्ती जलाई दे गया। जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा के इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगन गए? नहीं, एक सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर ना। ते एक दम ही आज है। बाबा फरीद कहते ने, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम गूंजनिया मनो मचिंदरिया। मैं पानी हुण पीना, प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी? मैं भोजन हुण छका, हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है? मैं नाम हुण जपा, फल अगले जन्म विच मिलेगा? साल दो साल बाद मिलेगा? इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। ए भी मैं अर्ज़ करां, ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए महाराज गए। तत् छिन टुक दम करारी जो करो, एक दम विच किधरे टिक जाओ, हाजर हजूर खुदा है। मैं पानी हुण पीवां ते प्यास महीने बाद मिटेगी? मैं रोटी हुण खावां ते भुख कल मिटेगी? लोकी कहिंदे ने कोई नहीं, सहजे सहजे हो जाएगा, गासी लग जांदी हौले हौले। बंदे नूं ताप चढ़े आवे बड़ा जोरदार, ते वो डॉक्टर नूं कहिंदा जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी, महीना दो महीना तड़पदा रहा। कहिंदा छेती कर, जल्दी ठीक कर। विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नूं चढ़े आवे, हौले हौले हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना चाहता। ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है। मनोचिंतक ऐसा कहने, लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होकर जीवदे ने और निराश हो जाते हैं भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने, ऐ दवाई ले लो, ऐ दवाई ले लो, उन्होंने अंदर निराशा है। रोग दे जीण की आदत बन गई, विकारां दे जीण का सुभाव बन गया, ठीक होने का ख्याल भी नहीं, और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पाई। नहीं ठीक हो सकांगे, इहदे जीवना पैदा। जैसे जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे, फ्रायड ने कहा है, हंकार विच काम विच क्रोध विच लोभ विच जीना पै गया, इहदा कोई इलाज नहीं। थोड़ा जिहा इन्हां नूं मदन कीता जा सकदा है, बाकी इन्हां दा त्याग नहीं हो सकता। जीवन नूं छड़ नहीं सकदे, इन्हां दे जीवना ही पैणा। यूरोप दे पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्राइड ने बड़ा निराश किया है, जीवना ही पैणा, इहदे जीवना पैणा। उन्हें ऐलानिया किया, भारत दे संत गलत कहिंदे ने, मन विच राम है। कहिंदा नहीं, मन विच काम है। मन विच निरंकार है, कहिंदा कतई ही नहीं, मन विच हंकार है। वो इंज कहिंदा है, कहिंदा मैं मन नूं पोल के देखिया, सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं। मैं मन नूं पोल के देखिया, सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं। मैं मन नूं पोल के देखिया, कहिंदा सिवाय काम तो होर कुछ नहीं। एवें कई जाने, राम है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछा। एक सीमा तक वो ठीक कहिंदा है, एक सीमा तक। जैसे सागर दे उपर उपर ते लहरां ने, या कुछ लभण गया मछलियां ने, संख ने, सिपियां ने, मोती ते गहरे कर दे।

0: ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਨ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੁਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਾਚਾ, ਸੋ ਸਾਚਾ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਦਮ ਤੇ ਪੁੱਟੇ, ਖੜਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ, ਜਪਣਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਤੀਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਜਪਣਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਔਰ ਜਪਣ ਦੇ ਚ ਜੋ ਢੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਤੇ ਬਣੀ, ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਤੇ ਪਏ, ਚੱਲ ਤੇ ਪਏ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨੇ, ਡਿੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਲਬ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਡਿੱਗਣਾ ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਉੱਡਦੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। और सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे एक कदम पीछे पुटे किथे पहुंचेगा, किधरे पहुंचेगा? चल चल के थकेगा, चल चल के टूटेगा, पहुंचेगा किधरे नहीं। दावे नाल मैं कह सकदा, चाली चाली साल तो जड़े गुरुद्वारे आ रहे ने, चाली साल पहले क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। चाली साल पहले लोभी सन, अज भी लोभी ने। चाली साल पहले झूठे सन, अज भी झूठे ने। और चाली साल पहले वासना दे भरे हुए सन, अज भी ने। कल ते कुछ भी ना बने, मेहनत ते बड़ी की थी, थके भी ने, टूटे भी ने। चालीस साल पहले हंकारी सन, अज भी हंकारी ने। खेड़ते कुछ भी ना चले ने, चल चल के थके ने, टूटे ने, पहुंचे किधरे भी, किधरे भी। हे प्रभु, मैं ते चलना ते डिगदा, तू मेर कर, तू मेरी बांह पकड़ता ही खेड़ बने। दास गोविंद फतेह सतगुर की बाहां दे मोहे निस्तार। गुरु गोविंद सिंह जी, हे प्रभु अपनी बाहां दे, अपनी बाहां पकड़ा ते डिगण तो बचिए। मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन। मनुख कोल जिहड़े कन ने, ये पुत्र नूं सुन सकदे ने, मित्र नूं सुन सकदे ने, पत्नी नूं सुन सकदे ने, पति नूं सुन सकदे ने, भरा नूं सुन सकदे ने, मित्रां नूं सुन सकदे ने, गुरु नूं नहीं सुनदे। ये हकीकत है महाराज। मेरे कोल ओ कन नहीं, सतगुर कहंदे ने, जो तैनूं सुन सकदा। मेरे कोल ओ जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका। मेरे बोल पुत्रां तक पहुंचते ने, परिवार तक पहुंचते ने, मित्रां तक पहुंच जाते ने, पड़ोसियां तक पहुंच जाते ने, हे प्रभु तेरे तक नहीं पहुंच। मेरे को इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचा। पहुंच दिए गल रब तक, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। जहां का कहा दरगे चले, महाराज कहने जेदा बोलिया होया दरगाह दे चल रहा है, परमात्मा सुन रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने मैं एवें नहीं बोलना, दे कन सुनो अरदास जीओ, मैं तेरे कन दे च गल करनी होवे थोड़ी करनी, तो सुनते मैं बोल। भगत बोलते ने प्रभु सुनदा, क्यों? उन्हां दे बोल प्रभु तक पहुंचते हैं। दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है, जबान तो निकली हुई गल तो सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती दिल तक नहीं पहुंचती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। मेरे कोल ओ अखां भी कोई नहीं जो तेनू वेख सकदियां ने। जो परमात्मा नूं वेखदियां ने वो अखां इतनियां निर्मल हो जांदियां ने, इतनियां पवित्र हो जांदियां ने, इतनियां सुंदर हो जांदियां ने, ओही नेत्र खूबसूरत ने जिन्हां च परमात्मा वसदा है। ओ नेत्र ते करूप ने, मैले ने, जिन्हां दे अंदर वासना है, जिन्हां दे अंदर अनर्थ है। साहब कहते हैं वो सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तेनों देख सकन। गुरु ग्रंथ साहब दे पहले टीकाकार भाई गुरदास ने आपकी ज्ञात लिए अर्ज करा, मेरे देखे मेरी स्टडी दे जो आया गालबन 150 शब्दों के अर्थ भाई गुरदास जी ने आप किए ने। जिड़े जिड़े शब्द अर्थ करन लगे गुणी ज्ञानी भुलेखा खा सकते सन, लोकी धोखा खा सकते सन, भाई गुरदास जी ने उन्होंने खोले। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मारा, इस श्लोक नूं भी खोलदे ने। पवन गुरु गुर शब्द है, वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता मैत कर ओत पोत संजोग बनाया। असी जो बोलते हैं पवन करके बोलते हैं, देही माटी बोले पवन। पवन ना होए बोल नहीं सकते। देखो लाश पई होंदी पानी के शरीर च है, मिट्टी का ढांचा भी पिया, पवन नहीं रह गई तो बोलना कोई नहीं, बोलना ही नहीं। बोलना ते पवन करके, देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर ए। बोल के ही संबंध जुड़ते ने, बोल के ही संबंध टूटते ने। कुछ ऐसा बोले बोल होंदा कि ओ परा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलते हैं मुदतां दी मित्रता दुश्मनी च बदल जाती। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नू तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पता रहे, पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सकून भी दे सकता है। खेड़ दे सारी बोलां दी है, मनुखी दुनिया दी सारी हलचल बोलचाल ते खड़ी है। ये भी मैं अर्ज कर दें, सारे संबंध भी बोलचाल ते खड़े ने। मनुख कह देंदा उत्थे साडी बोलचाल है जिथे संबंध होवे, जिथे संबंध ना होवे कहिंदा उत्थे साडी बोलचाल कोई नहीं। जिथे संबंध गूड़े होवन कहिंदा उत्थे साडी बोलचाल बड़ी चंगी है, जिथे ना होवे भई साडी बोलचाल ही कोई नहीं। उत्थे संबंध जुड़दे ने बोलन करके, ते बोलना पवन करके। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नूं गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके ते बोलना वाहेगुरु वाहेगुरु, ताई रसना जत सदी अंदर श्वास चलन पवन है। भावे पानी पीता है, भावे धरती मां है, पर पवन ते गुरु है, संबंध जोड़ता है परमात्मा। ऐसा कुछ बोलना है मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़ता है। कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़ता है, परिवार नाल संबंध जुड़ता है। जिड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़ते हैं, संसार नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहने शब्द। जिड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहने गुर शब्द। रोशनी नाल भरे हुए शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप विच मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलना तो होता है, ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना गुण औगुणा का पता ही नहीं चलता। क्रोधी है कि शांतमयी है, कि जल्दबाज है कि धीरजवान है, मूर्ख है कि सियाणा है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है, बोल दस दें। हाथों तो कुछ नहीं पता चलता, पैरों तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मथे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलना तो पता चलता। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च हंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च निरंकार है। तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हां दे अर्थ करन लगिया मनुख धोखा खा सकदा सी, भुलेखा खा सकदा सी, भाई गुरदास खोल रहे। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आख्या गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दे, शब्दां नूं खोल दे। इत्थे आखो शरीर की गल, शरीर की गल नहीं। महाराज कहिंदे ने अखां कोई नहीं, कन कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गूंगे, कन भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। इत्थे सारी अंग भंग हो गए। भाई गुरदास जी ध्यान नाल सुनना, भाई साहब कहिंदे ने देखबे को ना दृष्ट ना दर्स दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनू देख सका मेरे को अखां कोई नहीं, ते जिहड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तू दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास, देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए वे, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई। कहबे को ना सुरत ना सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निद्र गुण सुनिए सुनाई। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पुचा सका जबानी कोई नहीं, और तेरे बोल मैं सुन सका मेरे को कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरदास, कहबे को ना सुरत ना सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए मन में गुरमत गुरमत में न मन नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन कैसे बो नायक की नायिका का आइए भाई साहब भाई गुरदास मन में गुरमत गुरमत में न मन जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं करता जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करता जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं ते जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल ने ध्यान नाल सुनने वाली जो मेरी सोचनी है गुरु नू प्रवान नहीं गुरु कहिंदा ठीक नहीं है ते जो गुरु दी सोचनी है मैनू प्रवान नहीं मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना मत्था टेकण दा मतलब इन्ना ही है गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा गल खत्म मैं अपना विचारां दे मुताबिक जी के देख लिया सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया सिवाय विपतावां तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया और सही है ऐ गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा तू अपने विचार मैनू दे और गुरु कहिंदा भी है गुरु की मत तो ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी मेरी मत नाल नहीं हो सकती कहिंदे ने मनुख नूं अपने शरीर नाल धन संपदा नाल परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है अपने विचारां नाल मोहे मनुख कह भी देंदा है इन्हें मेरे विचारां नूं सट मारी जिस्म नूं सट लग जाए शायद बर्दाश्त कर लवे विचारां नूं सट लग गई बर्दाश्त नहीं इन्हें मेरे विचारां दा खंडन किया इन्हें मेरे विचारां नूं चोट पहुंचाई है इन्हें मेरी सोचनी नूं चोट पहुंचाई है इन्हें मैनूं बड़ा दुखी किया इहदा मतलब विचारां नाल मनुख नूं बड़ी भारी ममता है जीवन भर ममता रहिंदी पर कई दफा जब बिरध हो जांदा बुढ़ा हो जांदा उदों कहिंदा ऐ गुरु ऐ मेरी मत हुण लै तू अपनी मत मैनू दे पर गुरु कहिंदा हुण तेरे कोल मत रही भी है ते सारी गवा के आ गई सतना का मत हीण असना का व्यवहार ना पावे रही किथे इसे वास्ते थानू ये शेर चेते होवेगा शेख सादी साहब ने कहा है दर जवानी तौबा करदन सीरते पैगंबरी वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेजगार जिड़ा जवानी दे गुनाहां तो तौबा करे शेख सादी साहब कहते हैं उसकी सीरत ते पैगंबरां जैसी है पैगंबर जवानी ते गुनाहां तो तौबा जवानी ते शील ते संजम जवानी ते अपने आप ते काबू इहदी सीरत ते पैगंबरां जैसी है पर बुढ़ा हो गया तो कहिंदा मैं गुनाहां दा त्यागी ये फकीर कहिंदा मैं नहीं मनदा वक्त पीरी गुरगे जालम में शबद परहेज क्यों नहीं मनदे दलील दिती है एक बुढ़ा बगयाड़ अगर ए आखे ऐ भेड़ो ऐ बकरियो तुसी मैथों डरो ना मैं थानू पकड़ना छोड़ देता है पकड़ना नहीं छोड़िया उसको पकड़िया नहीं जांदियां गल ते इन्ने बुढ़ा बंदा कहिंदा मैं गुनाहां दा त्याग कीता है कता ही नहीं गुनाह ही उसका त्याग करके चले गए गुनाहां ने बैठना सी अखां दे च रसना दे च कन्नां दे च हत्थां च पैरां इत्थे सारियां कुर्सियां टुटियां पईयां बेचारे गुनाह किथे बैठा केड़ी थां ते बैठा कहिंदा मैं गुनाहां दा त्याग कता ही नहीं वक्ते पीरी गुरगे जालम में शबद परहेज भाई साहब कहने मन में गुरमत गुरमत में ना मन जो गुरु दी मत है वो मेरा मन कबूल नहीं करता और जो मेरी मत है वो गुरु नहीं कबूल करता जो मेरी सोचनी है ये गुरु नु परवान नहीं है और जो गुरु दी सोचनी है मैनू कबूल नहीं मन में गुरमत गुरमत में ना मन नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन कैसे बो नायक की नायिका का आइए अंग अंग टूटे आया है पैर भी कोई नहीं हाथ भी कोई नहीं अखां भी कोई नहीं कन भी कोई नहीं जबान भी कोई नहीं इस वास्ते मैं अर्ज करदा हुंदा है सारे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे ना होन ते पत्थर ते बंदे विच फर्क की है। पत्थर वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, पत्थर बोल नहीं सकदा, पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर कुछ कर नहीं सकदा। अगर मनुख परमात्मा नूं वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, परमात्मा नाल बोल नहीं सकदा, अपने बोल पुछा नहीं सकदा, इहदी सुरत चली नहीं परमात्मा दे मार्ग ते कि कम से कम धार्मिक तल ते ते बंदा पत्थर ही होर की। मैं दो शब्दों वास्ते माफी मंग लवा। बड़े बड़े इकट्ठ धार्मिक सम्मेलन मैं देखे ने, कोई एक अद मनुख बैठा होवे, कोई दो चार बैठे होन, औखे ना होना पत्थर बैठे दिखाई दे। इतनी असलियत पहले कंठ तो आई सी, मैं थले की थी, पर हुण इतना उछाल आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। मैं कह बैठा पत्थर। सुल्तानपुर दे नवाब ने गुरु नानक नूं कहा, सुने तुसी कहिंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही है। सतगुरु कहण लगे, केड़ी शक दी गल, इक्को ही ने, ते चलो साडे नाल नमाज पढ़ो फिर चलो। महाराज कहण लगे, चल हुणे ही चल, इशा दी नमाज पढ़दे आ, चल वक्त हो गया। इतनी उम्मीद नवाब नूं भी नहीं सी, चल पैण, चल पै। सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई, बाबा नमाज पढ़न लई जा रहा है नवाब दी मस्जिद, और नवाब दे नाल जा रहा है। बहुत सारियां नूं ते चिंता हुई, बाबे ने मजहब बदल लिया। बेबे नानकी मुस्कुरांदी रही, कहिंदे ने कृष्ण दी पहली भक्तनी जिसका पूरा अटल विश्वास सी वो द्रौपदी सी, जिन्हें श्रद्धा लैंदे, जिन्हें मुहम्मद साहब ते सब तो पहले श्रद्धा लैंदी वो खदीजा सी, उन्हां दी पत्नी सी। जिसने सब तो पहले गुरु नानक ते श्रद्धा लैंदी वो बेबे नानकी सी। इत्थों सिखी चली, खदीजा तो इस्लाम चलिया। जे किधरे उसकी पत्नी इनकार कर देंदी कि इस्लाम नहीं बदलना सी, ये भी मैं अर्ज कर लिया, उन्हें कबूल कर लिया। मुहम्मद ये बोल थोड़े नहीं ते खुदा दे लग गए। मोहम्मद साहब भी कह लगे, खदीजा तू ठीक जाने, मैं तो चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया, मैनू तो हुण बोलना ही नहीं आता, पता नहीं खुदा की बोलना। गुरु नानक कहिंदे ने, हों आको बोलना जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जीओ, मैनू बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोलता, पता नहीं रब की बोलता, पता नहीं परमात्मा की बोलता। जैसे मैं आवे कसम की वाणी, कैसड़ा करी ज्ञान वे लाड़ा। ये श्रद्धा सब तो पहले बेबे नानकी दी सी, सिखी उत्थों चली। खैर बाबा मस्जिद दे पहुंच गए, कतार दे खड़े हो गए, इमाम ने रुबात पढ़नी शुरू की थी, सारिया ने सजदा किया, गुरु नानक खड़े रहे, खड़े रहे। जन्म साखी दे बड़े विस्तार नाल एक गाथा लिखी और वक् वक् ढंग नाल लिखी। सुल्तानपुर दे नवाब ने अखां खोल के देख लिया कि बाबे ने सजदा नहीं किया, जो कि नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़न तो बाद, समाप्ति तो बाद नवाब कहन लगा, सब गल्लां ही गल्लां ने, राम इक्को है, अल्लाह इक्को है। तुसी कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी ते नहीं पढ़ेगी। महाराज कहने लगे, साडा वायदा सी तेरे नाल नमाज पढ़नी सी, तेरे नाल मिलके घोड़े नहीं खरीदने सन, तू ते काबुल विच घोड़े पिया खरीद रहा, आपां घोड़े नहीं खरीदने, आपां ते नमाज पढ़नी सी। साडा वायदा ए सी तेरे नाल नमाज पढ़नी, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने, तू घोड़े खरीदना पिया सी कि नमाज पिया पढ़दा सी। हैरान हो गया नवाब, नमाज पढ़दा घोड़े पिया खरीदा सी, कोई मंदिर दे पूजा पाठ करदे अपने घोड़े खरीददा, कोई गुरुद्वारे बैठा कथा कीर्तन सुनदे पाठ करदे अपने अपने घोड़े लोग खरीददे, कौन गुरु नाल जुड़दा, सब अपने अपने घोड़े खरीद रहे, अपनी अपनी गल्लां च उलझे हुए होंदे, अपने अपने झमेलिया फसे पए होंदे। कभी कदाई कोई पुरुष प्रभु की उस्तति दे जुड़े। हुण इत्थे प्रश्न पैदा होंदा, वो हाथ केड़े ने, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਕਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲਾਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪੈਰੀ ਨੰਗੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਥੋੜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ। ਬੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ, ਸਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਪੈਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਬਈ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ। ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਹੱਥ ਬਣਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ, ਪੈਰ ਬਣਾ ਭੈ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ, ਪੈਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਦੀਆਂ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝ, ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ, ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਇਉਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਾ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਖੁਦਾ ਸੇ ਤਲਬ, ਕਿ ਆਂਖ ਕਾ ਨੂਰ ਦਿਲ ਕਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਲੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਖੁਦਾ ਸੇ ਤਲਬ, ਕਿ ਆਂਖ ਕਾ ਨੂਰ ਦਿਲ ਕਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਲਮ ਮੇਂ ਵੀ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਵੋ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਕਸ਼ੇ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਇਉਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਨੇਤਰ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਟੁੰਡਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲੰਗੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੁੰਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁੰਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧਲਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਰਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਰੋਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧਲਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਰਾਏ। ਜੋ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਟੁੰਡਾ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਹੈ, ਬਹਿਰਾ ਹੈ, ਗੁੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸੇ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਭੰਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੁੱਲ ਹੀਨ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ, ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂਹ ਤੇ ਗੋਇਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। विकास सारा भोजन ते खड़ा है। रोज रोज भजन कीता जाए अमृत वेले उठ के, हर अमृत वेले वत्ते का भेजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। वाहेगुरु वाहेगुरु जपदिया जपदिया एक दिन वाहेगुरु दिखाई देने लग पैदा है, एक दिन उसके बोल चारों पासे सुनाई देने लग पैदा है, एक दिन उसका दामन हथां दे आ जाता है, एक दिन ऐसा महसूस होता सी कि परमात्मा की गोद च बैठे हैं। ये सारी तौफीक मिलती है भजन नाल। जैसे शरीर का सारा बल की है भोजन, भोजन ना मिले कोई इंद्रा विकसित नहीं होएगा, मनुख का शरीर मर जाएगा। पर भजन रोज रोज ना होवे वो अखां नहीं मिलनगियां जो परमात्मा नूं वेख सकदे, वो कन्न भी नहीं मिलनगे जो सुन सकदे, वो जबान भी नहीं मिलेगी जो भजन का रस माण सकदी है। ये भी मैं अर्ज करदा हां, भोजन की बुरकी मुंह ते रख रहे हैं स्वाद आ गया, वाहेगुरु वाहेगुरु जपदियां रस नहीं आया। क्यों? अजे जबान विचों तौफीक नहीं है, वरना वाहेगुरु आखण का भी अपना रस है। जिन्हों वाहेगुरु आखदियां रस आवे, साहिब कहिंदे ने परमात्मा उहदी रसना ते वसे है। प्रभ जी बसे साध की रसना, नाम एक जन का दासन दसना। वाहेगुरु तो इहदी जबान ते है, क्यों? ये वाहेगुरु आखदा है रस नाल भर जांदा है, ये बाणी जपदा है रस नाल भर जांदा है, बाणी ते इहदी रसना ते वस गई, नाम ते इहदी रसना ते वस गया। जिन्ने चिर तक वाहेगुरु वाहेगुरु आखदियां रस ना आवे, अजे वाहेगुरु रसना ते नहीं वसया। जितने चिर तक रसना ते नहीं वसया, अखां नाल दिखाई भी कुछ नहीं देगा, परमात्मा ने दिखाई देगा संसार दिखाई देगा, कन्ना नाल सुनाई भी नहीं देगा। पहले गल रस दी, भोजन पहले जवान दा रस बनता है, खून बाद विच बनता है, मांस बाद विच बनता है, हड्डियां दी ताकत बाद विच बनता है, इंद्रियां दी शक्ति बाद विच बनता है, रस पहले। भोजन की बुरकी का रस आ गया, स्वाद ते पहले आ गया, हुण सहजे सहजे ये बुरकी पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की ताकत बनेगी। वाहेगुरु आखदिया जब रस आ जाए तो समझ लेना वाहेगुरु रसना ते दिवस है, अजे रूहानी शक्ति नहीं है, अजे अखां विच भी तौफीक नहीं है कि प्रभु नूं देख सकन, अजे ये सिलसिला विकसित होवेगा। पर इतनी गलती स्पष्ट हो गई जबान ते, ये पहला कदम है। बाणी पढ़ रहे हैं कोई रस नहीं है, वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हैं कोई रस नहीं है, अजे रसना ते भी नहीं वसा, अजे हनूस दिल्ली दो रस्त, रूहानी बल रूहानी शक्ति अजे वेखना, उस प्रभु नु सुनना समझना अनुभव प्रकाश वो ते लंबी गल है, अजे ते आखदे आ रस भी नहीं है। प्रभ जी बसे साध की रसना, जैसे रस आन लग पैंदा है रसना ते प्रभु वस जांदा है, ते रसना विच बरकतां आ जांदियां, बोलां विच बरकतां आ जांदियां, एक दिन हत्थां च बरकतां आ जांदियां, जपदियां जपदियां एक दिन कदमां विच क्रांति आ जांदी है। ये सब कुछ जपदियां जपदियां होंदा है। महाराज कहिंदे ने ऐसे भी हथ ने बिल्कुल बेबरकत, जे ओ कंचन नो हथ लावे खेऊ सेती रल गया, सोने नो हथ पांदा मिट्टी हो जांदा, बणदे होए कम नो हथ पांदा डै डेरी हो जांदा। पर ऐसे भी हथ ने मिट्टी नो छूंदे ने सोना, बिगड़े होए कम नो हथ पांदे ने सिरे चढ़दा। महाराज कहिंदे ने हथां च बरकत, पैरां दे सत्ते है। ये तां हुंदा है जद पहले बोलां च बरकत आ जाए, प्रभु दा नाम रसना ते टिक जाए, साहिब रहमत करन बख्शिश करन ये सौगात साडी झोली च पवे, ताकि इस परम आनंद नूं असी माण सकीए। इतनी है विचारां प्रवान फुल छुक दी शमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया, एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया, एक बचन पर समय अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़, क्यों मैं चल नहीं सकदा, क्यों नहीं चल सकदे। हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे, और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी नहीं कर सकता। एक कदम चलेगा, दो कदम चलेगा, तीसरे ते डिगेगा, लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है, जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है, बच्चे नु चलना आ गया है, प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने। खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है, चलो एक कदम ही सही चलिया ते है। एक कदम चल चलना, एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है, बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने, चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही, वाट लखां को दी है चिंता न कर। कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई, चलन दी जांच आ गई, ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना, मां नू चिंता हो जाती है, पिता नू पीड़ा हो जाती है, ले जांदे डॉक्टर कोलों, हो गया तीन साल दा, हो गया चार साल दा, पैर नहीं पुटदा। तीन चार वरियां दा हो गया अजेश दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहिंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलता है, मम्मा अखर पहले निकलता है, मां मां ये पहला करण लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर देच इस जबान चो अगर निकले वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां, मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा अजे बच्चा रह गया, बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है, वाहेगुरु कहना नहीं आया। जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसका नां ते निकल आया एदी जबान चो, पावे मां ने नहीं आखिया मैं मां हां तेरी, लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कटवांदी है। चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे परशियन होवे अरबियन होवे, चाहे कोई हिंदी बोलता है सिंधी बोलता है पंजाबी बोलता है, दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है, मां मां मां। और जो जिंदगी का अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत ते आया सफल हो गया, मां ते निकलिया। और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, ते बच्चा बच्चा रह गया अगे नहीं जा सके। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु मैं बोलन दी जांच नहीं आई, तेरे बोल मैं सुन सका میرے کول کن بھی کوئی نہیں، میں اپنی آواز تیرے کنا تک پہنچا سکاں، میری زبان نو اجے بولن دی جاچ نہیں آئی۔ تیرے رستے تے میں چل سکاں، او پیر میں کتھوں لیا وا؟ ہے گے نے منک کول پیر، ایک کلب تھیٹراں دے مارگ تے چل دے نے، بازار دے مارگ تے چل دے نے، سنسار دے مارگ تے چل دے نے، کدی کدائیں کوئی قدم جو پرمارت دے مارگ تے چلن؟ ستگرو کہندے میرے کول وہ ہاتھ بھی کوئی نہیں جو تیرا دامن پکڑ سکن۔ ہاتھ ہیں منک کول، کدی پتراں دا دامن پکڑیا، کدی پتنی دا، کدی پتی دا، کدی ماں دا، کدی پتا دا، کدی متراں دا دامن پکڑیا، کدی بھراواں دا دامن پکڑیا، کدی بھن دا دامن پکڑیا، کدی پڑوسیاں دا۔ ہے پربھو تیرا دامن پکڑ سکاں، اجے میرے ہتھاں دے چوں سکت نہیں آئی، اجے میرے ہتھاں دے چوں پکڑ نہیں آئی۔ ہوندا تے ہے ہتھاں دے چ کوئی نہ کوئی دامن، ہر ایک دے ہتھاں چ ہوندا ہے، کسے دے ہتھ وچ پتا دامن نہیں ہے، کسے دے ہتھ وچ پتا دا دامن ہے، اس دامن دے آسرے تے چل رہے، کسے دے ہتھ وچ بھراواں دا دامن ہے، کسے دے ہتھ وچ پتنی دا دامن ہے، پتی دا دامن ہے، اور کسے دے ہتھ وچ پڑوسیاں دا۔ کدی کدائیں کوئی کبیر جیسا، روی داس جیسا، رامانند جیسا کہہ اٹھدا ہے، اے پربھو میرے ہتھاں تے کیول تیرا ہی پلہ ہے۔ اور دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے اگمی بول، سبے ساک کڑاوے دتھے تو پلے تیڑے لاگی۔ اردو فارسی دامن کہہ دیندے نے، پنجابی پلہ کہہ دیندے نے۔ گرو نانک کہندے نے، اے پربھو میرے ہتھاں تے کیول تیرا ہی پلہ ہے، سفل ہو گئے ہتھ، تیرا پلہ میرے ہتھ چ آ گیا، مہان ہو گئے نے ہتھ، تیرا دامن میرے ہتھاں چ آ گیا۔ تے جد تیرا دامن میرے ہتھاں چ آ گیا، ہن جتھے توں اتھے اے دامن میرے ہتھاں چ، اے پلہ میرے ہتھاں چ۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے مہان واق ادھیاتمک گہرائیاں نو اپنے چھپائی بیٹھا ہے، جس نو اجاگر کرن دی میں ایک نمانی کوشش کر رہا ہوں۔ بھوج بل بیر برہم سکھ ساگر، گرت پرت گہ لے ہو انگوریا، سرونا سرت نین سندر نہیں، آرت دوار رٹت پنگوریا۔ اے پربھو او خوبصورت نیتر میں کتھوں لیاواں جڑے تینوں ویک سکدے نے، اس تو زیادہ اور کوئی اکھاں خوبصورت نہیں ہوندیاں جنہاں اکھاں دے وچ پرماتما ہوندا ہے۔ ویکھو گے اکھاں، کسے دی اکھاں دے وچ دھن ہے، ٹپک رہا ہے لوبھ، کسے دی اکھاں دے وچ روپ ہے، ٹپک رہی ہے واشنا، کسے دی اکھاں دے وچ اس دی اولاد ہے، ٹپک رہی ہے ممتا، ممتا ہی دستی پئی ہے اکھاں دے وچ دیاں پتر نے، واشنا ہی دستی پئی ہے اکھاں دے وچ روپ رنگ ہے، کرودھ ہی دس رہے ہے، اے لال اکھاں ہی دس رہی ہیں، اکھاں دے وچ کوئی دشمن بیٹھ گیا ہے اور دشمن نے اکھاں لال کر دیتی ہیں۔ اکھاں لال نہیں ہوئیاں، دشمن نے لال کر دیتی ہیں، دشمن نے اپنا رنگ آدھا پک دیتا ہے۔ کدی کدائیں او اکھاں جنہاں دے وچ پرماتما ہوندا ہے، اور جد پرماتما اکھاں وچ بیٹھتا ہے، انہاں نیتراں تو کوئی نیتر خوبصورت نہیں ہوندے، وہ ایسی خوبصورت اکھ جہدے وچوں پرارتھنا جھلکدی ہے، جہدے وچ پریم جھلکدا ہے، جس دے وچوں سم درشٹی جھلکدی ہے، جس دے وچوں دیا ڈل ڈل کے پیندی ہے۔ اسے درشٹی نوں آکھیا گیا امرتمئی درشٹ، امرت درشٹ، نہیں تے درشٹی بھی زہریلی ہوندی ہے، جویں کئیاں دے بول زہریلے ہوندے نے، کئیاں دی تکنی بھی بڑی زہریلی ہوندی ہے، کئیاں دے بول زخمی کر جاندے نے، کئیاں دی تکنی بھی آگات پہنچاندی ہے، چوٹ پہنچاندی ہے، گرا کے رکھ دیندی ہے۔ تکنی دے زہر بھی ہے، تکنی دے امرت بھی ہے۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کردے نے، भुजबल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेओ अंगुरिया सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। मेरे कोल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोला नु सुन सका। सुन सकदे ने कन परिवार दी आवाज संसार दी आवाज किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने बहरे ने हर एक दे कन बहरे ने आवाजा सुन रहे ने। ऐसी गल नहीं है समुचे परिवार दी आवाज सुन सकदे ने संसार दी आवाज सुन सकदे ने निरंकार दी ते कदी कदाई कोई कद पुरुष। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं और। हे परिपूर्ण परमात्मा जितनी भी आवाजा मेरे कन्ना च पै रही पंछियां दियां पशुआं दियां मनुखां दियां बदलां दी गर्जन पवन दी शां शां मैनू ते इंज लगदा है ए तू ही बोल रहे है। सब तेरी आवाज सब तेरा नाद सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे ने मेरे कोलो कन भी नहीं मेरे कोलो जबान भी नहीं मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावा। किसे दे बोल घर तो बाहर नहीं जांदे उसदे घर दे ची सिक्का चलदा है ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलता। इहदी गल घर दे बंदे ते मन सकदे ने बाहर दे नहीं इहदे बोल बाहर नहीं चलदे। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसदे बोल सारे महल्ले सारे कलोनी चल जांदे ने मन लैंदी है समुची वसनीक उसके बचना उसके बोलों मन लेंदी है सुन दी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे च भी पहुंचते ने उत्थे भी सुने जाते ने। कदी कदाई कोई लखा करोड़ा च एक कद खुशकिस्मत इंसान जिसके बोल निरंकार तक पहुंचते ने और सुनद निरंकार उसके बोल परमात्मा भी सुनने पैदे ने उसके बोल ईश्वर नूं भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने उस जबान में कित्थों लियावां जिहड़े तेरे तक बोल पहुंचा सके वो कन में कित्थों लियावां जिहड़े तेरे बोल सुन सके वो नेत्र में कित्थों लियावां जो तेनूं वेख सकन और हत्थां दी उह मैं पकड़ कित्थों लियावां जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कोल तो पैर भी कोई नहीं तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रियां करके है कर्म इंद्रियां करके है। अगर एक कर्म इंद्रेस दे कोलों खो लईए ते ज्ञान इंद्रेस दे कोलों खो लईए फिर पत्थर ते मनुख दे च कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकदा पत्थर किसे पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकदा क्योंकि उहदे कोल हथ पैर नहीं ने। पत्थर नहीं बोल सकता पत्थर सुन नहीं सकता पत्थर वेख नहीं सकता पत्थर सुंग नहीं सकता पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता पत्थर सोच नहीं सकता। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार दे च इंसान होवेगा गुरुद्वारे मंदिर दे ते बैठा है जिवें पत्थर जिवें एक पत्थर नूं कोई बोध नहीं पत्थर दे च कोई गति नहीं पत्थर दे च कोई पकड़ नहीं पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनूं ते एक गाथा याद आई एक सूफी संत हसन दी उह जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वाज देवे व्याख्या करे तो मुंह दीवार दी तरफ कर लैंदा सी और पिठ कर लैंदा सी स्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते स्रोतियां ने बर्दाश्त किया चलो खैर सुन दे पाया चलो मुंह साड़ी तरफ नहीं करदा ते ना सही बोल साड़े तक पहुंचते ने। लेकिन एक दिन स्रोतियां ने बेनती की थी फकीर साई ऐसा क्यों कर दे हो जब सानू सुनाण वास्ते ही तलावत करते हो जब सानू सुनाण वास्ते ही उपदेश आवाज देंदे हो फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदे हो पिट साड़ी तरफ कर लेंदे हो। तो हसन मुस्कुराया ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਦਾਮਨ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਦੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਸਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਜ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਬੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਦੇਖੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਦਿਖਾਈਏ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਨਬੇ ਕੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਨਿਧ ਗੁਣ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਲਾਈਏ। ਏ ਗੁਰੂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 81 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਮਹਾਨ ਤਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂ ਸੋਨਿਓ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥੈਓ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਧਰ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਇਧਰ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਰਧ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਮਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਤੋ ਕਿਆ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਸਮਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, इसनु सियाणा आखण दी लोड़ की मूड़ है। और एक महान सियाणे नाल, दार्शनिक नाल, ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इसनु मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गया, तल सम हो गया, बराबर हो गया। भाई साहब कहंदे ने मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे उन मन ले उलाइए, जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी देच परमात्मा है, मेरी सोचनी देच पदार्थ ने, तेरी सोचनी देच राम है, मेरी सोचनी देच काम है, तेरी सोचनी देच निरंकार है, मेरी सोचनी देच अहंकार है, मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े, मैं नेड़े किस तरह आवां। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब कहने अंग अंग टूटे ने, ना मेरे कोल हाथ ने, ना मेरे कोल पैर ने, ना मेरे कोल अखा ने, ना मेरे कोल कन है, ना मेरे कोल रसना है, ना मेरे कोल सोचनी है। हे गुरु मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने चलना आ गया हे प्रभु मैनू खुशी हुई है, पर उच्च बड़ी तेज चलना चलना आया जिसने आज ही चलना सीखा तो किन्ना क चलेगा, एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने सतगुरु तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया। एक कदम पुटन दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहंदे ने इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बां पकड़ लेंदा है परमात्मा, बां पकड़ लेंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल, ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिया तो यह उन महान झलक नू भी वेख सकेगा, थोड़ी जिया झलक की ही अपने औगुण दिखाई देने लग पैने। एक झलक है, पहला प्रकाश की है, अपनियां कमजोरियां दिखाई दे जाना, बड़े तो बड़े बलवान मनुख सियाणे मनुख कदी उन्हां नूं अपने औगुण नहीं दिखाई देते, और कदी उन्हां ने अपनियां कमजोरियां नूं कबूल भी नहीं कीता। दिखाई देण ते कबूल करन, कदी कोई गुनाहगार नहीं कहिंदा कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई देंदे ने ना गुनाह नूं ओह मनदा। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आख्या सी कतल कीता है, गुनाह कीता है, गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा। और गुनाह किधरे रोज भी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है, गुनाह गुनाह नहीं रह जाता, पाप धंधा बन जाता है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ते किरत है, ये ते धंधा है, धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होता है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर का अनर्थ धंधा बन जाता है, तो फिर धंधा दिखाई देता है, गुनाह नहीं दिखाई देता, किरत दिखाई देती है, पाप नहीं दिखाई देता। जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह धंधा दिखाई दे रहे हैं, तो ये मनुख हुण गुनाह नूं किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा। अगर अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, अपने औगुण दिखाई देन लग पे ने, एक पहली झलक मिली है, दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देन लग पे है, परमात्मा दा पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, परमात्मा दी परम शक्ति दिखाई देन लग पेगी, कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देन लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति दी पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति दी उपासक बन दिए, शक्ति दी पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति दी झलक पेंदी है जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी दी झलक पेंदी है, जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती उनु प्रभु दी शक्ति कित्थे, जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते उसनु परमात्मा दा पुन्न प्रभाव कित्थे, जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा वो चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा, कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जांदा है जिसने अखां दा ऑपरेशन कीता है, पट्टी खोली है मरीज दी, ते उनु कहंदे आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल, जैसे वो अखां खोलदा है तो डॉक्टर पुछदा है कुछ दिखाई देता, कहंदा हां अंधेरा अंधेरा, डार्क रूम दे चाकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने, कहंदा अंधेरा, डॉक्टर कहंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तैनू रोशनी भी दिखाई देवेगी, अंधे नू अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नू कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नू कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहंदे है कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनू अंधेरे दा भी बोध नहीं है, उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखा, जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे। कहंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, ते कहन लगे तुसी मैनू बहुत अच्छे और प्यारे लगदे हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मांग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे, बहुत चंगा लगे, बगल गिर करन नू जी करे, फिर कोई और करन नू भी जी करता है, उस तो निछावर होण नू भी जी करता है, उस तो सदके होण नू भी जी करता है। सतगुरु कहंदे तैनू कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु दी संगत करदिया करदिया अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे, ए मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मेनू मौका दिता है, मंगो तो ओ अखां दे जिड़ियां तैनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन, इन्हां अखां ने बहुत कुछ देखे है, अजे उस झलक नू नहीं वेख्या जिन्हों वेखण तो बाद कुछ होर वेखण दी तमन्ना रही नहीं जांदी। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जांदा है, परमात्मा सुनाई देंदा है, परमात्मा सोच मंडल दे चा जांदा है, ओ मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जांदा है, बुजुर्ग हो जांदा है। सतगुर ए बुजुर्गी सारियां दी झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुरु प्रसाद, हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुखे हरो, हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक के

अरु क्यों ऐसा क्यों कह देता है? भूख है, खाना पीना अमृत है, एक एक बुरकी अमृत है, शरीर दी लोड़ा नु पूरा करेगी। भूख नहीं है हुण, एक एक बुरकी जहर है, रोग है। इस वास्ते वैद धनंतर ऐलानिया कहंदे सन, होर रोगां दा कोई कारण नहीं 90% आहार रोग, खाने पीने तो रोग पैदा होंगे। आहार रोग, आहार चिकित्सा, आहार दारू, आहार ही औषधि है। खाना पीना औषधि है, खाना पीना रोग है। कीड़ा खाना पीना रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा फरमान कीता है, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। इस होर दे की अर्थ करोगे? निकम्मे चकरा च ना पै जाना। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, होर हुण होर खाई जांदा, भुख ते है नहीं। दो रोटियां नाल पूर्ति हो गई। गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक यही अर्थ ने। मन मत नाल कोई अर्थ करे ते करदा फिर। बाबा होर खाना खुशी खुआ, भुख ते है नहीं, खा रहे है, एक एक बुरकी रोग होवे, एक एक बुरकी जहर बनेंगे, एक बुरकी शरीर दे अनर्थ पैदा करेगी। बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। जरूरत तो खादा होया तन नु रोगी बनाएगा, मन नु विकारी बनाएगा। शक्ति अधक बनेगी, ओदी लोड़ नहीं। तो मैं अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। पर भुलेखे करके तन दियां लोड़ां नु मन ने अपनी लोड़ समझ ले, तो उहदे नाल की आउंदा है? तन ते लोड़ां दे तल ते सीमित रहिंदा है, तन दियां लोड़ां मन दे तल ते लोभ बन जांदियां। लोभ मन दे च आउंदा है, तन दे च नहीं आउंदा। तन ते तृप्त हो जांदा है, भुख मिट गई, तन ते साफ कह देंदा नहीं लोड़ हुण मैनूं। और सारियां ही तन दियां लोड़ां बिल्कुल सीमित ने, लोभ सीमित नहीं, वो की नहीं सीमित। मनुख लोड़ां करके बेईमान नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके धोखेबाज नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। मनुख लोड़ां करके पापी नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। कबीर, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ जिथे उथे ते पाप होएगा, लब पाप दोए राजा में ता कूड़ हुआ सिकदास। अगर लोभ राजा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहने, पाप वजीर आजम है, उसका नाल ही रहेगा। लब ते पाप दोवें कट्ठे रहेंगे, लोभ ते पाप दोहे कट्ठे रहेंगे। मैं फिर अर्ज करा, लोड़ां करके मनुख भ्रष्ट नहीं आंदा, लोभ करके आंदा। लोड़ां दी ते सीमा है, कितनियां लोड़ां ने, बिल्कुल सीमित ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं। अरबां खरबां दी धन संपदा जमा हो जाए तां भी लोभ शांत नहीं होता, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं। इस वास्ते इंज कह रही है, लखां पति भी मंगता है भुखा है भिखारी है, करोड़ां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, अरबां पति भी नंगा है भुखा है भिखारी है। बल्कि सतगुरु कहते हैं, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखी है। सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए, दुखी दा दुखी रहे। कारण, शरीर दियां लोड़ां नो जद मन ने लोभ बना लिया, लोभ दी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरबाणी समझांदी है, मन तेरी लोड़ कुछ होर है। तू तन दी संगत करके तन दियां लोड़ां नू अपनियां लोड़ां समझ बैठा है। तन ते बने है रोटी तो भोजन तो ठीक है,

0: मैं तुहानू एक बेनती करांगा मेरे वीरो जिहड़े तुसी बैठे हो, इस मुल्क विच धर्म कमान की पूरी आजादी जे तुसी ट्रक चलांदे हो, तुसी टैक्सी चलांदे हो, थोड़ा जिहा दृढ़ता करके तुसी देखो भी मां तुरदिया कहिंदी पुत वेखी केस मत्था चुमिया, भैण तारो उहनू मिले, उत्थे लिख देने हर एक दी कैड़ी भैण जी दी इच्छा नहीं कि मेरे भरा दा घर वसे उहदे बच्चे होण अगे। सच्ची मुची वह भैन वीर नूं मिली तो उन्हें शब्द कहे जेड़े, कहन लगे तू उदास ना होई वीर नूं क्या, कहन लगे मैं उदास नहीं हुंदा, तू चला जाएगा वीरा पर जिन्नी देर तक मां ते मैं जिउंदियां हाँ तेरे घर विच सिंगां दा चुल्ला कदी बंद नहीं होवेगा, ये रोटी भी पकेगी, ये दाल भी बनेगी, ये कपड़े भी जाणगे। इथों पूले पिंड तो भाई साहब नूं लै के अगला पड़ा कीता पढ़ाणा पिंड, ये वैसे अजकल पाकिस्तान विच जी क्योंकि पूला सरहद दे उत्ते वी अजकल मैं कहा पाकिस्तान पढ़ाणे पिंड, ये भी पिंड हिंदू मुसलमाना दा सी जी। इत्थे जदों नंबरदार दे कोल टिके जिहड़ी पंचायती थां जिहड़ी हुंदी है, पिंड वालियां नूं पता लग गया भी भाई तारू सिंह नूं पकड़ के लै चले आ। याद रखियो तुसीं उह बंदे दा सिख दा करैक्टर देखो, अपने पिंड च बंदे दा हुंदा ही, चलो उस पिंड दे विच फिर नौजवान धर्मशाला च गुरुद्वारे इकट्ठे होए छेवीं पातशाही उत्थे, उन्हां कहा एक काम करो, ये किन्ने कु बंदे ने भला जिहड़े लैण आए ने गिनती दे ने, इन्हां सारियां नूं खत्म करके तारू सिंह नूं आपां छड़ा लैणा, भाई तारू सिंह आपां छड़ावांगे। एक बजुर्ग भी गुरुद्वारे पहुंच गया, उन्हें कहा भाई नौजवानों तुसीं जज्बात विचो पर जिन्हों छड़ाना चाहते हो फौजी दस्ता मारना उन्हों पुछते लईए। वह बजुर्ग फिर भाई तारू सिंह दे कोल गया, बजे सन भाई साहब, कहन लगा भी सिंह जी भाई साहब नूं अदब दिता कि इत्थों दे नौजवान फैसला किया भी असीं फौजी दस्ता खत्म कर देंगे, तुहानूं छड़ाना है जो मर्जी होवे। अगो हस के कहने सिख परोपकारी हुंदा है, मैनू कल्ले नूं छड़ा लोगे कल नूं सारा पिंड मार देणगे। कहिंदे ने असीं की सेवा करिए, कहन लगे मैं शहीद होण चलिया, शहीदी भागां नाल मिलदी, मैं शहीद होण चलिया, एक काम करियो ये मेरे घर का तवा बंद करना चाहते ने, तुसीं तवे की थां ते लोहा बना दिया जी, ये साडे घर दे देगे बंद करने चाहते ने, तुसीं वड्डियां देगां चाड़ दिया जी। जे तुसी सिंघां दी सेवा करोगे जुझारवां दी, ये असली सेवा मेरी होवेगी। इत्थों भाई साहब नूं फिर लाहौर लै गए। मैं आप नूं बेनती करां जी, जखरीए दी कचहरी च पेश कीता, भाई साहब ने जाके फतेह गजाई। हुण वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सुण के तां औरंगजेब दे प्राण उड गए सन। ये फतेह आम दी नहीं, इहनूं कदी ना भुल्लिओ सिंघो, ये फतेह गुरु गोबिंद सिंह दी है। साडा पुराना इतिहास कहिंदा है गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सन जिहड़ा सिख नूं सिख सामने फतेह बुलाएगा उहदे वल मेरा मूँह होया करेगा। तो उहनूं आपां घट्टो घट्ट देखिए, इस तरह भाई साहब जी नूं कहा गया भी तू बागियां नूं रोटी देना, क्या मैं तेरा हाला भरना, मैं खेती करना, अपनी वाही करना, मैं कदी कोई पाप नहीं किया, कदी कोई जुर्म नहीं किया। उन्हें कहा तू रोटियां खवाना है, वह कहिंदा ये मेरा धर्म है ते मैं अपने धर्म ते अपनी कौम की सेवा वास्ते सब कुछ ही कुर्बान करने तैयार। उन्हें कहा भी देख तू सोना किन्ना सियाणा किन्ना, इस्लाम धारण कर। वह कहिंदा है भाई साहब ने कहा मेरी सिखा ने अरदास, ये भी याद में रखे जो तुरन लगे संगत नूं क्या पढ़ाने, मेरी अरदास करो कि मेरी सिखी कैसा ना निभे। उन्हें कहा मैं तो गुरु के चरणा च अरदास करके आया, तू डोलन की गल कह रहा है, मेरी सिखी कैसा ना निभे। जदों दो बारी कहा जखरिया खुआ गुस्से में आके कहिंदा तेरे केस मैं जुत्तियां मार मार के उड़ा दिया। ये लफ्ज याद रखियो, मैं हर चीज बकायदा प्रूफ नाल कह रहा क्योंकि हाकम अनहोए शब्द वरतेगा। पिछले समय की नहीं होया जी, की कुछ नहीं वापरिया। उन्हें कहा मैं जुत्तियां मार के तेरे वाल उड़ावांगा। सिख ने अगे क्या याद रखी तू मैनू जुत्ती नहीं मारनी, मैं जुत्ती मार के अपने मरण तो पहला तेनू अगे ला के ले जावांगा। यह शब्द कचहरी चो मैं तेनू अपने अगे लैके जावांगा, तू कौन है मैनू जुत्ती मारन वाला। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਰਖੜੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੂਜੀ ਚਰਖੜੀ, ਚਰਖੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਸ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ, ਬਲੇਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Guru Granth Sahib Maharaj Ji di pavitr bani, e dur ki bani, dukhan da kaleshan da nash karan wali bani, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਵਖਦ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜਾਤੀ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਵਾ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਵਖਦ ਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਬੈਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਤੋ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਬ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇਐ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੇ ਤਿਆਗਤ ਔਰ ਲੁਭਾਵੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਧੀ ਕਰ ਜਾਵੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਰ ਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਭੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਇਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖ ਹੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹੇ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖਿਆ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸ ਕਰ ਚਲਹੇ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹੇ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਰੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨਕੇ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਤਾਂ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਤਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਦੱਸੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਘਰ ਘੜ ਜੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ
0: ਅਵਰ ਨ ਭੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ जल में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लगे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीर एक
0: ज्यो बसदा को खुद को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला
0: जैसे मैल न लगे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के ढाई अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते उच्चा
0: मन अपने सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रभ आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का हो सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है
0: ब्रह्म ज्ञानी की कर ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में देखे भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्या रूप न देखे नेत्र
0: साध की टहल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू के निंदा
0: सबते जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विद्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्रिय जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचे
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानक को वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्ण प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जोन न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मै जाने अस्थूल
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: चौवर नाम जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोई
1: कर कृपा अंतर उरता है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कित न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम किस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगा परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सो जी पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हिता वै
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिक काटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताई साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित कर रखे तैसा तन्ना
1: आपे कर्म करावन जोग
0: भावे सोई फन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विधि अनेक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भाई तीर्थ वासी,
0: कई कोट बन प्रमय उदासी,
1: कई कोट वीर के स्रोते,
0: कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी,
0: कई कोट कब काव विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे,
0: नान करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भाई अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपण कठोर,
0: कई कोट अपिग आत्म ने कोर,
1: कई कोट पर दर्प को हिरहे,
0: कई कोट पर दुख न करे,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश परमा है,
1: जित जित लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
0: कई कोट पात्र वृक न बिजाए,
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
0: कई कोट देश भू मंडल,
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस ताम सातक,
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर शास्त्र,
1: कई कोट की रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की ये चिर दीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच,
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिपतरे अप्रभूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट बहुत जोनी फिरे,
1: कई कोट बैठ सी खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
0: कई कोट मा चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखे,
0: नानक सब किश प्रभ के हाथे,
1: कई कोट भई बैरागी,
0: राम नाम सख तिन लिव लागी,
1: कई कोट प्रभ को खोज अंते,
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्रभ व्यास,
0: जिनको मिलियो प्रभ विनाश,
1: कई कोट मांग है सत्संग,
0: पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेजन सदा धन धन,
1: कई कोट खानी अरखंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई कोट होए अवतार,
0: कई जगत की नु विस्तार,
1: कई बार पसरियो पासार,
0: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बहु भांत,
0: प्राप्त होए प्रभ माहे समात,
1: ताका अंत न जाने कोई,
0: आपे आप नानक प्रभ सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
0: जिनहो वत्या तम प्रगास,
1: कई कोट तत् के देते,
0: सदा नहारे एको नित्रे,
1: कई कोट नाम रस पीव है,
0: अमर भय सद सद ही जीव है,
1: कई कोट नाम गुण गावे,
0: आत्म रस सुख सहज समावे,
1: अपने जन को साथ साथ संभारी,
0: नानको हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई,
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए, अष्टपदी
1: करण करावन करने जोग,
0: ज्योत सुभावे सोई होग,
1: फिर मैं ताप उताप नहारा,
0: अंत नहीं किश पारा वारा,
1: हुक्मे धार अधार रहावे,
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार,
0: हुक्मे अनक रंग प्रकार,
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई,
0: नानक सब में रिया समाई,
1: रब भावे मानो गत पावे,
0: रब भावे ता पात्र त्रावे,
1: रब भावे बिन सास ते राखे,
0: रब भावे ता हर गुण पाखे,
1: रब भावे ता पत उधारे,
0: आप करे अपन विचारे,
1: दोहा सरिया का आप स्वामी,
0: खेले से अंतर जामी,
1: जो भावे सो कार करावे,
0: नानक दृष्टि और न आवे,
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे,
0: ज्योत सुभावे सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले,
0: ज्योत सुभावे सोई करे,
1: मन जानत बिखिया मह रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे,
1: भरमे भूला दह दिस धावे,
0: नमक माहि चार कुंड फिर आवे,
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे,
0: नानक ते जन नाम मिले,
1: छिनवे नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: तिस तत्काल दर दिस प्रगट आवे,
1: जाको अपनी करे बख्शीस,
0: ताका लेखा न गणे जगदीश,
1: जियो पिंड सब तिसकी रास,
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बनत आप बनाई,
0: नानक जीव देख बढ़ाई,
1: इसका बल नाही इस हाथ,
0: कल करावन सब को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जियो,
0: ज्योत सुभावे सोई फन थी,
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बसे,
0: अब हूँ सोग हर करंग हसे,
1: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
0: अब हूँ उपकाश प्याल,
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिलावन हार,
1: अब हूँ नृत करे बहुभांत,
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात,
1: अब हूँ महा क्रोध विकराल,
0: अब हूँ सर्व की होतरवार,
1: अब हूँ होए बह बड़ राज,
0: कभू भिखारी नीच का साजा,
1: कभू आप कीर्त में आवे,
0: कभू भला भला कहावे,
1: ज्यों प्रभु राखे ते भी रहे,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कभू होए पंडित करे बख्यान,
0: कभू मौन तारी लावे ध्यान,
1: कभू तट तीर्थ स्नान,
0: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कभू पीठ हस्पतंग होए दिया,
0: अनक जौन परमे परमिया,
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे,
0: युवर भावे तिवे न चावे,
1: जो भावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कभू साल संगति पावे,
0: उस स्थान ते बौर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रगास,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मन तन नाम रते एक रंग,
0: सदा बसे पर ब्रह्म के संग,
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना,
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गवन पाए विश्राम,
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक,
1: सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले,
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अज्ञा सुख पावे
1: धनवंता हो कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसवंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर की रेन जहाँ का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस कौशक नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तार है को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना न कहो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: इतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विद्या के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ कर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप पीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: कोसते पेन कहो किस होए
0: हाथ नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घट घट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आरजा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरह
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी हर बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाई है
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इं बिल लाए
0: ज्यो जल में हून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बुआर तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तो रही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब करत इसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहु दिन रात
0: तिसे त्याहु सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपागी नानक जन से श्लोक
1: तजहु सियान पुसुर जन हो सिमरहु हर हर राई
0: एक आस हर मन रखो ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ,
0: ਦੇਵਨ ਪਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ,
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ,
0: ਬਉਰ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ,
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ,
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਕਿਸਨਾ ਹੀ ਹਾਥ,
1: ਜਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ,
0: ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ,
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ,
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ,
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ,
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ,
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ,
1: ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ,
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ,
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ,
0: ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ,
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ,
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ,
1: ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ,
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ,
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ,
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ,
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ,
0: ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ,
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ,
0: ਨਾਨਕ ਤਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ।

0: आपन चलते आप ही करे,
1: आपन जावन दृष्ट अनदृष्ट,
0: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट,
1: आपे आप सगल में आप,
0: अनजुग त्रच था व्यथा,
1: अविनाशी नाही किस खंड,
0: धारण धार्यो ब्रह्मांड,
1: लख पे पुरख प्रताप,
0: आप जपाए था नानक जाप,
1: दिन प्रभु जाता सो सो बावंत,
0: सगल संसार उदरा तन मंत,
1: प्रभु के सेव सगल उदारण,
0: प्रभु के सेवक दुख बिसारण,
1: आपे मेल लय कृपाल,
0: गुर का शब्द जप पै निहाल,
1: उनकी सेवा सो ही लागे,
0: जिसनो कृपा करे बट भागे,
1: नाम जपत पावे विश्राम,
0: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान,
1: जो किस करे सो प्रभु के रंग,
0: सदा सदा बसे हर संग,
1: सह सुपाई हो वैसो हो ही,
0: जने हार पछाणे सोए,
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना,
0: जैसा सत सदृष्टाना,
1: जिसकी उपजे तिस माही समाई,
0: सुख निदान उन्हों।

दे मंगेसे सगुण सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रब बेकार एक होंदा खा चले जाओ तिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहा।

पौड़े बिन सतगुर कि ना पायो, बिन सतगुर कि ना पाया। सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के तो धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

लख ने किन चंगियाईया लख पुना प्रवाण लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में है छुट्टे हे प्राण

0: ला पर गड्डी लदिए पड़ भरिए साथ पड़ बेड़ी पाइए पड़ गड्डिए खात पढ़िए है जेते वर्ष बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके एक गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्ण वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदाल जे हो तो कुबेरुति हुरत होए नान पाहे बारा को रंग ना सोए पैविज खुमचड़ा ये सनु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: महला पहला लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हो शिकदार काम ने इज्जत पूछिए।

0: तुबा पूरा तपे का सतगिर तुबा हो कलजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुबा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में ऐसा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त कर नीच।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया हो रे नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे सलाही ससूत दरगे।

पौड़िया पिहकरणा कियो कला पहिता धारिये देखे किता अपना तर्क चिपकी सारिये जो आया सो चलसी।

लेखे अकर्मंग अपर्मंग अगंजे अलेखे पुजांग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासे स्वतर्मंग बेपूते सदा सच।

आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जाण्या जाण्या आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल वख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिनका मोह टुटा।

माता पिता कुटुंब सहित सो पवित संगत सबाईया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया।

करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली। सतगुरु जी बेटी मन प्रीत कौर दिया मन दिया भावनावां गुरमत अनुसार पूर्ण करनिया, ग्रिस्त जीवन दा सुख बख्शीश करना, परिवारक जीवन विच अगे वधाउणा। सतगुरु महाराज जी कुलजीत कौर, सवनप्रीत कौर, किरणवीर कौर, अमृतपाल सिंह नूं चरणां दा प्यार नाम बाणी सिमरन दीआं दातां बख्शीश करनी। अंग संग सहाय कोणा रंभे होए कारज, अंग संग सहाय को के कारज रास करने विघना दा नाश करना। सतगुरु जीओ कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है जी, देग सजाउंदिआं हजूर बाणी पढ़दिआं होईआं भुल्लां दी खेमा बख्श।

मुख उचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखे बधरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु सत्संग जीओ, फतेह प्रवान करने, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया भर के इतिहासक ग्रंथों नूं वाचिए पढ़िए, इतिहास विच दो तरह के मनुख ही छाए हुए ने। इतिहासकारां ने अपनी कलम दे राही, अपने दिमाग दे राही सोच के जो लिखे है, उन्हां दी कलम दो तरह के मनुखां दे आले दुआले घूमदी रही है। सिर्फ एक मुल्क नहीं, सारी दुनिया का जो इतिहास है वो सिर्फ इंज कह लो दो तरह मनुखां का ही इतिहास है। केड़े? प्रथम ओ जिन्होंने जगत की झोली विच कुछ पाया है, कुछ दिता है, कला, ज्ञान, विज्ञान, सूझ समझ, धर्म, सुख, संपदा, कुछ भी झोली विच पाया होवे, उन्हां दा इतिहास है, उन्हां दी गल है। दूसरा उन्हां दा इतिहास है जिन्हां ने खोया है, खूब खोया है। जो खो नहीं सकिया, जो दे नहीं सकिया, इतिहास विच उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई गल नहीं है। तुसी पढ़ो दुनिया का इतिहास, बस दो तरह के ही मनुखों का इतिहास है। दिते होवे उसने कुछ, अपनी जान दिती होवे, अपनी सुख संपदा दे दिती होवे, कला दिती होवे, ज्ञान दिता होवे, विज्ञान दिता होवे, कुछ भी दिता होवे, या ते देण वाले इतिहास दे छाए हुए ने या खोण वाले। मनुख दे मन दे ते शक्ति दा प्रभाव है, ते मैं अर्ज करां कि दोवें शक्तिशाली आउंदे ने, देण वाले खोण वाले। हाथ ही कमजोर ने, दिमाग ही कमजोर है, कोल कुछ भी नहीं, जगत नूं की देगा। पर कमजोर बंदा खो भी नहीं सकदा, ताकत नहीं, समर्था नहीं, किस तरह खोवेगा। खोण वास्ते भी ताकत चाहिदी है, देण वास्ते भी समर्था चाहिदी है। किस वास्ते समर्थ मनुख इतिहास ते छाए हुए ने? समर्थ मनुखां दा ही इतिहास है। मैं इस करां खोण वाले भी समर्थ ने, कुछ ना कुछ ताकत है। बिना ताकत तो कोई किसी का कुछ खो नहीं सकता। खोण वास्ते भी कोई शक्ति चाहिदी है, देण वास्ते भी कोई समर्था चाहिदी है। सियाणे कहिंदे ने इह जो देण वाले ने इह तीन तरह दे ने, और जिहड़े खोण वाले ने इह भी तीन तरह दे ने। इह देण वाले तीन तरह दे किहड़े ने? प्रथम मैं इहनां दा जिक्र करां, भगत, सूरबीर, दानी। खोण वाले तीन किहड़े ने? कातल, डकैत, दुराचारी। इह खोंदे ने की? खोंदे ने कोई जान खोंदा है, कोई माल खोंदा है, कोई इज्जत, आबरू, असमत खोंदा है। तीन तल ते ही खतरा होंदा है, चौथा कोई खतरा नहीं। अगर कोई मनुख आके मैं खतरे दे चाहां तो खतरा सिर्फ तीन तल ते होंदा है, चौथे तल ते खतरा नहीं होंदा। जान नू खतरा, माल नू खतरा, इज्जत आबरू नू खतरा, और कोई खतरा नहीं होंदा। इतनी मैरिज करने हैं। जो जान लई खतरा बन जाए वो कातल है, जो माल लई खतरा बन जाए वो डकैत है, ते जो इज्जत आबरू लई खतरा बन जाए वो दुराचारी है। संसार दे इतिहास दे छाए हुए ने।
देण वाले भगत सूरबीर दानी। भगत की देंदा है जगत नो, जो ओ नाम जपदा है, जपन दे नाल उदे शरीर चो जो वाइब्रेशन बनती है, जो तरंगा निकल दियां नो जगत नो प्रभावित कर दियां ने। भगत कबीर कहिंदे ने, कबीर सो मुख धन है जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। देही दा दे कहना की सारा शहर पवित्र हो जांदा है भगत दी भगती नाल। अगर उसकी सुरत जुड़ गई है, अगर उसनू अध्यात्मक आनंद मिल रहा है, तो ओदियां तरंगा कईयां नू अंदोलित करनगियां, कईयां नू प्रभावित करनगियां, एकाग्रता बख्शने। भगत अपनी जुड़ी हुई सुरत करके चारों पासे प्रभावित करता है अपनी उन्हां तरंगा दे नाल, भगती दा दान देंदा है। सूरबीर जो कमजोर दी बांह पकड़दा है, मजलूम दी बांह पकड़दा है, ते कमजोर दी खातर अपनी जान तक दे देंदा है। संसार दे इतिहास दे सूरबीर छाए हुए ने, भगत छाए हुए ने। तीसरे दानी जो किधरे भी धर्म करम समाज इंसानियत मुल्क कौम दी तामीर लई, कला ज्ञान विज्ञान दी उसारी लई धन नु खर्च करदा है। तो ये तीन छाए हुए ने, भगत सूरबीर दानी एकाग्रता बख्शने। ये तीन देण वाले ने और तीन ही खोण वाले ने। जान नू खोण वाले, माल नू खोण वाले, इज्जत आबरू नू खोण वाले। खोंदे कौन ने शक्तिशाली, देंदे कौन ने शक्तिशाली। खोण दियां बिरतियां क्यों पैदा होंदियां ने असंतुष्टि करके, देण दियां बिरतियां क्यों पैदा होंदियां ने संतुष्टि करके। असंतुष्टि इस चों अधर्म दा जन्म होंदा है, संतुष्टि इस चों धर्म दा जन्म होंदा है। कहिंदे ने जो असंतुष्ट है उसकी दृष्टि अपने आप दे च नहीं होवेगी, अपने घर दे च नहीं होवेगी। असंतुष्ट मनुख की दृष्टि पराए घर दे च आउंदी है, दूजियां दे घर दे च आउंदी है। बड़ी ही एकाग्रता बख्शनी। जैसे भगत जयदेव जी महाराज फरमान करते हैं, लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद बिद आचरण। जो असंतुष्ट है उसकी दृष्टि प्राय घर दे चाहती है। लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद बिद आचरण। ये आचरण तो गिरी हुई गल है कि कोई मनुख अपनी दृष्ट किसी दे घर ले जाए, दृष्ट नू नहीं रोक सकता। दृष्टि क्यों जाती है? असंतुष्ट है, लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद बिद आचरण। असंतुष्ट मनुख की दृष्टि दूजे दे घर ते जाती है, वो अपने आप दे च नहीं आता। विद्वाना ने तीन तरह की असंतुष्टि मनी है एकाग्रता बख्शनी। जरूर इस बच्चे नू बाहर ले जाओ कुछ ते थोड़ा जिहा, क्योंकि ध्यान उचाट आता है, थोड़ी जी एकाग्रता आप जो है बख्शो। असंतुष्टि तीन तरह की होती है, परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारक असंतुष्टि, व्यक्तिगत असंतुष्टि। असंतुष्ट मनुख अपने घर दे च नहीं आता, उसकी दृष्टि अपने घर दे च नहीं होती, दूसरियां दे घर दे च आती है।
ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਲ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੈਸਾ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਏਗਾ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੁਚੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਗ੍ਰਹਿਣ ਜਦ ਬਿਦ ਆਚਰਣ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਗ੍ਰਹਿਣ ਜਦ ਬਿਦ ਆਚਰਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ ਹਉ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਜਾਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਕੱਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੈਥੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਤੀਸਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਜੈਸੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਵਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ ਵੈਸਾ ਸੰਯੋਗ ਜੁੜਿਆ। ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ
मैं अवगुणा दा सागर, मुझ अवगुण सह ना ही दोस। बाबा फरीद कहंदे ने तू गुणा दा सागर है पर मेरे विच अवगुण तेरा कोई कसूर नहीं। इतना वड्डा महान फकीर यह भी अपने आप विच असंतुष्ट है कि जिस तरह का मैनू होना चाहिए सी मैं वैसा नहीं हाँ, ये परमात्मा मैं वैसा नहीं हाँ। ये तीन असंतुष्टियां ने, परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि और व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये जड़ी असंतुष्टि है ये कातल डकैत दुराचारियां जन्म देंदी। परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, दृष्टि दूजियां ते, तो किसे दिन दूजियां तक इस दे हथ पहुंच जांदे ने, दे पैर पहुंच जांदे ने, और अपने आप नू काबू रखना औखा हो जांदा है। सारी दुनिया विच कानून है, समाज दे नियम भी हैं, धर्म भी है, लेकिन धर्म नू तोड़ के, समाज दे नियम तोड़ के, कानून नू तोड़ के दूजियां दी जान माल असमत अक्सर जो है खो ली जांदी है और खतरा रहिंदा है सारी दुनिया, क्योंकि सारी दुनिया असंतुष्ट लोगां नाल भरी पई है। जो जगत नू देंदे ने इने भगत सूरबीर और दानी, जो खोंदे ने कातल डकैत दुराचारी। ऐसा ते देखिया गया है कि तिन्ने अवगुण एको ही मनुख दे, वो कातल भी सी, वो डकैत भी सी, वो दुराचारी भी सी। तिन्ने गुण किसे एक मनुख दे नहीं देखे गए सन कि वो सूरबीर भी होवे, भगत भी होवे, दानी भी होवे। ये तीन गुण एक मनुख दे नहीं देखे गए सन, तीन अवगुण तो एको मनुख दे देखे गए, और अक्सर इतिहास दे इस तरह के मनुख छाए हुए ने, और रोजमर्रा की जिंदगी भी इस तरह के मनुख प्रगट होते रहते ने कि वह कातल भी है, वह दुराचारी भी है, और वह डकैत भी है। तिन्ने ही अवगुण एको ही मनुख दे, तिन्ने गुण एक मनुख दे नहीं अज तक प्रगट होए सन कि वह भगत भी होवे, वह सूरवीर भी होवे, वह दानी भी होवे। इतिहास खाली से इसकी पूर्ति की धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। वह भगत ऐसा है कि मैदान जंग विच भी जे अमृत वेला हो गया तो समाधि ला के बैठ जाना और खो जाना परमात्मा दी दुनिया च, लीन हो जाना। वो सूरवीर ऐसा है कि सवा लख नाल भी घिरिया होवे ते उसका हौसला पस्त नहीं आउंदा सी, वो हिम्मत नहीं हारदा सी, उहदी सूरवीरता विच फर्क नहीं पैंदा सी। और वो दानी ऐसा सी, अज तक इस तरह दे दानी होए ने जगत विच, कोई अन्न दे दानी, धन दे दानी, जमीन दे दानी, वस्त्रां दे दानी, ते सोना चांदी दान करन वाले, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल लकब जुड़े होया सरबंस दानी, सब कुछ दान कर देना। वो भगत भी है, वो सूरबीर भी है, वो दानी भी है। किंज ने सूरवीर होण लई, दानी होण लई, भगत होण लई मन दे संतुष्टि दा होना बड़ा लाजमी है। बिना संतुष्टि तो ना कोई भगत बन सकदा है, ना कोई सूरवीर, ना कोई दानी, और बिना असंतुष्टि तो ना कोई कातल बन सकदा है, ना कोई डकैत बन सकदा है, ना कोई दुराचारी। और असंतुष्ट मनुख दे कोल अगर ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, सता आ जाए, तो फिर ते बहुतियां दी जिंदगी खतरे च होवेगी, फिर ते बहुतियां दी इज्जत खतरे च होवेगी, फिर ते बहुतियां दी जान खतरे च होवेगी, बहुतियां दा माल खतरे च होवेगा, अगर असंतुष्ट मनुख दे कोल शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए। कानून कहिंदे ने कमजोर मनुखां दे लई है, ताकतवरां लई नहीं है। कमजोर की है, जो है कानून की है, एक मकड़ी दा जाला जिद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जांदे ने, हाथी तोड़ के लंघ जांदे ने, ये भी मैरज करदे हैं।
असंतुष्ट मनुख दे कोल अगर शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए, तो वो जितनिया तबाहियां नू जन्म दे सकता है। एक दफा ते इतिहासकार भी कम उठते हैं, उन्हां दी कलम भी कम उठती है, उन्हां दी लेखनी भी कम उठती है। ईरान का एक महान प्रसिद्ध सूफी फकीर होया है शेख सादी, वो कहिंदा है, ई चुनी अरकान ने दौलत मुल्के वीरां में शबद। अगर इस तरह का साजो समान किसी मुल्क विच जमा हो जाए तो कहिंदा समझ लो मुल्क वीरान हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। किस तरह का साजो समान, कैसा साजो समान, वो इसकी व्याख्या करता है। गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शबद। जिड़ा मीर है, राजा है, हुक्मरान है, वो ऐसा होवे जैसा गुर्ग बग्याड़। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी अपने ढंग नाल व्याख्या की है, राजे शी मुकदम कुत्ते। बहुत सुंदर नक्शा खिंचे है अपने दौर विच, अपने समय विच जो वातावरण सी। ये फकीर कहिंदा है, मैं नजूमी ते नहीं हाँ, मैं ज्योतिषी ते नहीं हाँ, पर मैं फिर भी दस सकदा कि अगर इस तरह का साजो समान किधरे जमा हो जाए, मुल्क बर्बाद हो जाता है, मुल्क नेस्त तो नाबूद हो जाता है, वीरान हो जाता है, उजड़ जाता है। इंचुनी अरकान दौलत मुल्के वीरां में शबद। कैसा साजो समान, कहिंदा गुर्ग मीरो जिस देश दा राजा बग्याड़ होए, सग वजीरो उहदे जिहड़े वजीर होवन ओ कुत्ते होवन, ओ चीरे फाड़े ते उहदा बचिया कुचिया ए कुत्ते खान। गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शबद। दीवान जेड़ा है जो परजा दी गल हुक्मरान तक पहुंचावे, वो ऐसा होवे जैसे मूस चूहा। हिंदी च भी मूसा कहंदे ने, परशियन दे च भी मूस कहंदे ने। मूस दीवा में शब्द, दीवान जेड़ा है वो मूस होवे, वो परजा दी गल टुक देवे, असलियत पेश ही ना आने देवे। चूहे दा कम की है टुक देना, भावें वह खावे भावें ना खावे पर टुक देंदा है। टुकना उसकी फितरत, टुकना उसकी सुभाव। इतनी ईर्षा होवे टुक देवे। दीवान ऐसे होवन जैसे कि चूहे। मैं देखदा सिख जगत नूं काफी समय तो कई चूहे टुकदे पए। इना दा परवकार, इना दी शहाद टुक के रख दो। भई इतिहास दे देश नू आजाद कराया है, इनिया कुर्बानियां टुक दे। ये दानी ने, ज्ञानी ने, अमृत वेले उठन वाले ने, नाम जपन वाले ने, परवकारी ने, सब कुछ टुक दे, कट दे। टुक दे इतिहास नू, टुक दे सच्चाई नू। चूहा टुक देंदा है। शेख सादी का यह बड़ा सोहना एक कलाम, कहिंदा मूश दीवा में शबद। जिहड़ा दीवान है ना, यह मूश होवे, चूहा होवे, असलियत नूं टुक के रख देवे, असलियत जाहिरी ना आउण देवे। कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले जब सूबा सरहंद की कचहरी दे पेश किए गए, तो कहिंदे ने उस वक्त 17 जज ही बैठे सन, मतलब जिहड़ी महफिल राजसभा दी दरबार लग्या, 17 मनुख बैठे सन ते 17 ने फैसला देना सी। नवाब मलेरकोटला सी, इस दे विच दीवान चंदू सी, इस दे विच काजी सी, इस विच आले दुआले दे रजवाड़े सन, और खुद आप बैठा सी
ਨਵਾਬ ਵਜੀਦ ਖਾਂ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਛੋੜ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਤਿਫਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਈ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮਾਂ ਰਸਤ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਈ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮਾਂ ਰਸਤ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਈ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮਾਂ ਰਸਤ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਰਾਏ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਭੁਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ। ਔਰ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਜਦ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਮਾਰਮੀ ਰਫਤੀ, ਇਮਾਰਮੀ ਆਮਦ, ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਰਮੀ ਰਫਤੀ, ਇਹ ਸੱਪ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਾਹਾ ਸ਼ੁਦ ਕੇ ਚੋਂ ਬੱਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬ ਮਾਂ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਚੀਦਾ ਸੱਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਗਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਪ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹਾ ਸ਼ੁਦ ਕੇ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਨ ਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ, ਅਜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬੁਲੰਦ, ਸੱਪ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਸੱਪ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਬੂਲ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਐਸੀ ਚਲੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ, ਭੁਜੰਗੀ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁਜੰਗਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੱਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਂ।
चाह शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार के बाकी बमां दस्त पेची दामार जे मर्दी के अफगर खामोशां कुनी के आतिश दमारा फिरोजां कुनी। इसी मुखवाक पातशाही दसवीं है जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना। की होया तू चार चिनगारियां बुझा दितियां ने ते शोले भड़का दिते ने। कहिंदे ने अथा जुलम जिथे हो जाए उस चो रोस जन्म लैंदा है। किसे वक्त इकबाल ने एक बड़ा कीमती शेर लिखिया सी, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तखरीब जनू के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। बड़ा कीमती उसका शेर है, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तकरीब जनू के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। कहिंदा हर बर्बादी देच कोई नवी उसारी आउंदी है, हर तबाही देच कोई नवी तामीर आउंदी है। डॉक्टर मुहम्मद इकबाल फिलासफर इस ढंग नाल सोचते ने, दार्शनिक इस ढंग नाल जो है सोचते ने, उन्हां दी इस ढंग दी जो है विचार आउंदी है। सिख इतिहास ज्ञानियां दा इतिहास, दानियां दा इतिहास, भगतां दा इतिहास, सूरबीरां दा इतिहास, शहीदां दा इतिहास, इतने चूहे लग गए ने टुकी जांदे ने टुकी जांदे ने टुक दियो। मूस दीवा में शब्द दीवान ऐसा होवे जैसे के मूस चूहे, हुक्मरान ऐसा होवे जैसे के बगयाड़, वजीर ऐसे अवन जैसे के कुत्ते। गुरगमीरो सग वजीरो मूश दीवा में शवद, दूसरी पंक्ति, जाग जाहिद हर सनासी बूम आलम में शवद, जाग जाहिद हर सनासी। जाहिद लोग धार्मिक बंदे, धर्म दे मुखी ते धार्मिक बंदे ऐसे अवन जैसे के खोते। खरशनासी उन्हां दी पहचान खोतियां दी तरह हो गए। क्यों ऐसा क्यों कह दिता इस फकीर ने? पुराने जमाने बार बरदारी दा कम ट्रांसपोर्ट दा कम खोतियां तो ही लिया जांदा सी। एक थां तो दूसरी थां ते जाना है, माल एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचाना है, तो खोतियां दे आसरे ते सारा सिलसिला हुंदा सी। खच्चर खोते एक पिंड तो दूसरे पिंड, एक शहर तो दूसरे शहर माल लै जांदे सन, हता के एक मुलक तो दूसरे मुलक। सादी कहिंदा है खोते दे उत्ते 100 पोथियां कुरान शरीफ दियां लद देईए ते वह एक पिंड तो दूजे पिंड लै जाए ते ये जिहड़ा खोता है मौलवी फाजल बन जाएगा, फकीर साई बन जाएगा, वली अल्लाह बन जाएगा, कोई खुदा शनास हो जाएगा अगर ये लद के लै गया। हू बहु उदाहरण वजों इंज कह दईए, अगर एक खोते देते 100 गुटके 100 पोथियां गीता दे लद दईए ते वो एक शहर तो दूजे शहर पहुंचा देवे बेचारा खोता, तो क्या वो भगत जी बन जाएगा? उसी खोते देते 100 सुंदर गुटके लद दईए तो एक पिंड तो दूजे पिंड पहुंचा देवे ते हुण एक खोता गुरु का सिख बन जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा, आत्मज्ञानी हो जाएगा, लद के लै गया। पिठ ते धर्म ग्रंथां नूं लदर के कोई खोता वली अल्लाह नहीं हो जांदा, भगत नहीं हो जांदा, ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जांदा। ते दिमाग दे उत्ते जिसने गीता नूं लद लिया, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी सिर्फ दिमाग विच है, याद है, व्यवहार विच नहीं है। इहदे व्यवहार विच ने, व्यवहार विच ते कठोरता प्रगट आउंदी है, व्यवहार विच ते क्रोध प्रगट आउंदा है, व्यवहार विच ते ईर्ष्या है, व्यवहार दे इत्ते हंकार है। उन दिमाग दे सुखमनी साहब भी है, जपजी साहब भी है, बड़ा याद है इसको, बड़ी पढ़दा है।

0: श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समां लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनू कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझिया है उहनूं हुण अपनी जिंदगी विच प्रयोग विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेन झलक मिली है तो हुण जुड़न की कोशिश कर, पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल का ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच, जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है, अकल ते रस्ते दा चानना है, ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे विच ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपिए, कितना भी विचारीए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलता है कि जिथों असी शुरू हुई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अगे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडे सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडे बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नूं जन्म देवे, श्रद्धा नूं जन्म देवे, विश्वास नूं जन्म देवे, भावना नूं जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पनिया बिन मीन तलफे, त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़प दी है, जिन्हें गौ मां तो बिना उसका बछड़ा ओ तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है। हे प्रभु जद भी रंजक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, श्रद्धा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पनी शुरू हो जांदी है। कारण कि प्रेम दी अधिकता, भावना दी अधिकता, श्रद्धा दी अधिकता आनंद नूं जन्म देंदी है, रस नूं जन्म देंदी है। श्रद्धा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जांदा है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन विच रस नहीं रह जांदा, बिल्कुल सत्संग विच रस नहीं रह जांदा। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ी है, श्रद्धा जोड़ी है, प्रेम जोड़ी है, तो फिर रस दी गंगा वग तुरदी है। और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जांदा है, श्रद्धा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाय। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा ओ अक्सर गिलियां दे जीवदा है, हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवण वाला मनुख अक्सर व्यापारी हो जांदा है। तो दुनिया दे चोटी दे व्यापारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे ने, हिरदे दे तल ते नहीं। ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा कि हिरदे दे तल ते जी रहे ने। बुद्धि दा प्रयोग करदे ने पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जीवदा है, श्रद्धा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करदा है, वरतों करदा है। और इस तरीके नाल श्रद्धा भी अपवित्र हो जांदी है, इस तरीके नाल वो प्रेम भी धुंधला ते मैला होंदा है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च, ते विछोड़ा उदो ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है, जद श्रद्धा छीन आउंदी है, जद किधरे भावना नूं सट लगदी है, जद किधरे विश्वास कमजोर आउंदा है, उदो रस आनंद और सुकून भी एक पासे हो जांदा है। तो तड़पना ते कुदरती गल है, शुरू होवेगी मोहे लाग ते ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन बतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं, बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं, उन्हां दे जीवन दा केंद्र ते श्रद्धा है, उन्हां दे वर्तन वाले वे विच विचार ने। वो वस्तु नूं समझदे ने, विचार नाल जुड़दे ने, भावना नाल। परमात्मा दा थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे वो प्रभु नाल भाव करके जुड़दे ने, तो परमात्मा दी बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल आउंदी है। भावें आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखिया होवे तां वी उतनी सूझ नहीं रखेगा जितनी कि भगत कोल है। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा दा ज्ञान है उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होवेगा, क्योंकि भगत ते जुड़े है, भगत ने ते रस माणे है, भगत नूं ते उसदी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है, क्योंकि वह जुड़िया होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार वह ते सिर्फ विचार कर रहा है, वह ते सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहा है। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है, भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहिंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। ये भगत ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਲੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਗੀਤ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮਾਂਜੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਖੂਬ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਮੈਂਢਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਕਛੂਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਗੀਤ ਦਾ ਝਰਨਾ ਇੰਜ ਫੁੱਟਿਆ, ਆ ਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਠਾਕਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਲ ਮੇ ਹੋਤੇ, ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੀਠਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਠਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਠਲ ਮੰਦਿਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਣਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜਲ ਦੇ ਚ ਨੇ, 21 ਲੱਖ ਥਲ ਜੰਤੂ ਨੇ ਔਰ 21 ਲੱਖ ਨਭ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਮਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਾਲੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਗਾਲਬਨ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਉਜਵਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੌਂਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਆਈ ਇਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਭੌਂਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਹੇ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੌਂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋ ਪੂਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭੌਂਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਉ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਉ, ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਡਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਊ ਚੋ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਛੜਾ ਥਣ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਮੈਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਆ ਨੀ ਲੈ ਦੁੱਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਬਿਤਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੇ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੰਗ ਗਿਆ ਬਛੜਾ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਨੀ ਲੈ ਦੁੱਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਬਿਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਛਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਛੜੇ ਨੇ ਪੀ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਛੜਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥਣਾਂ ਦੇ ਚ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਵਾਂ? ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਚ ਦੇ ਚ, ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਚ ਆਪ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਧੁਨੀ ਇੰਜ ਉੱਠੀ, ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਜਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਮੈਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूरन बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया। हे प्रभु जल दे चितू मच्छी दे चितू तू ते व्यापक है, ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्ला बारे ऐसा कहिंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा, ते तू तितली होके शहद दी मक्खी होके भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना, आप ही भोग ला लेना, गऊ तू बछड़ा तू दुध तू तू ही तू है, इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चल रहा है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नू, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों, पर नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनो श्री नंद लाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत जाहिद फिदाए खानकाह, हर को जा जामे मुहब्बत दीदा एम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा है तेनू बुता दे चो, और मुस्लिम लभदा है तेनू खानकाह दे चो, पर हर को जा जामे मुहब्बत, मैनू ते हर थां ते तेरी मुहब्बत तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है, चाहे वो मंदिर है चाहे वो मस्जिद है, हर पासे तो ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं, हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीद, ना में सोई सेविया, ना देहोरा ना मसीद, तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद दे च नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहते हैं, सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, मेरा राम घट घट दे च बोल रहे है। और राम तो बिना कौन बोल सकता है? राम ही बोल रहा है पशुआं दे च, राम ही बोल रहा है पक्षियां दे च, राम ही बोल रहा है मनुखां दे च, राम ही बोल रहा है पवन दी शांशां दे च, राम ही बोल रहा है सागर दे गर्जन दे च, बदलां दे गर्जन दे च, और सागर दी गर्जन दे च ही नहीं प्रभु बोल रहा है कोयल दी कूह दे च, बुलबुलां दे चहचहाण दे च, हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं। सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं, सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि प्रभु एक व्यापक सत्ता है, वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़िया टुकड़िया दिच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनू किवें प्राप्त करिए, नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है, किवें पहुंचिए, मार्ग की है आखिर रस्ता की है। तो नामदेव कहंदे ने, जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदिया ही मार्ग बनदा है। आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दिया ही रस्ता बनता है, ते मच्छी दे चलदिया ही सागर दे मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देता है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देता है तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जब चलांगे तो चलदिया ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखने हां कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी है, एक रेखा बन जांदी है, एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल विच ऐसा है, वाहिगुरु जपना आरंभ कर दईए, बस आरंभ करदिया ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक, जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इसनु खोले है परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने। गुरुमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। गुरुमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है ओ परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग दे उड़दिया ही मार्ग बनता है, चलदिया ही मार्ग बनता है। इस तरह गुरु का सिख जब जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है, अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है। राम राम जपदिया ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल विच लीन, श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राहीं जगत नूं बिठल विच लीन करदे रहे, राम विच लीन करदे रहे। और भ्रमण करदिया करदिया अनेकां नूं आपने राम विच लीन कीता, बिठल विच लीन कीता। और लीन करदिया करदिया एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल विच लीन हो गए, उस प्रभु देच लीन हो गए। और लीनता ऐसी हुई, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: चिट्टे छोले लवो 388 दा बैग, 2 पाउंड प्लेन गुड़ 298 नू, अते रोमा टमेटोज 98 सेंट्स नू पाउंड। फ्रूटी कैना विशेस यू हैप्पी कैनेडा डे।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए तां डॉलर इत्थे पहुंचने करने ने तां गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो। 604-349-1313 यूनिट 103 8840-120 स्ट्रीट सरी 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।